0: 즉 체중 간로 쪽이나 더 탱 담보 냠데드 양 딱래 좀 좁삼나 탱 담보 랑 그 랑이 그 삼나 더 랑이 그셈 더 잡아대는 메일이다
1: 그래서
0: 땅 나로 탱 담보 케빈 톱탑시 전에 냠데드 또 마음속 그 다다한테 약보도 도움이다
1: 그래서
0: 답득 뺀나 랑 그 로톤 랑 이 랑이 같이 제 체효나 더 랑이 같이 텐도 요마가 제 탕신의 마음속 랑속을 랑속 마음속 케빈 덥잖아 랑이 안 잔다 케빈 타고 메게 다 랑이 그를 루드나 तो राह करी तो अंदर अलग चांचांच चीज़ है ना तो तेरी तो कैबिन तो तो नेता चांबो ये नहीं चावा देता होंगे मावा ना तो तो चीज़ तो बनना न्याम देव जिंगे माँ दात ता ये ना न्याम देव जीवन लोग जीवन ना
1: था
0: माँ बोली था ता तेरे जीवन लोग जीवन ना था न्याम देव माँ ना तें तांबो तो चांचुंग कोंची तो सामनो के ना था जों था वो ना मैं ना ता चांग दें के सामनो लक्षण लक्षण चांग मत ता मांसो के ची दली आ सामसा मांसो ता केवी तो मैं रानी कांगे से चेन ना ता सो तबले ची आ सामनी के ता सामनो रो
1: या
0: तो ना तो गो दू ता तो पैन ना मांसो के ईशी तो जीरो ता तरंग करता है ना गे में के मरी चांगियों में बा गुन मत दुंगिया चाहते तो लिता तरंग करता है नीटर ना तो ना सोंग दियो रे मरी चांगियों में
1: बा
0: ते चौंबा काही के ते चे
2: 就差了那他姐妹跟老家你别跟别人他们自己跟公平全部给他弄出个娘娘的那个也勒索他这你可满娘跟刚里他要到要这个你给他弄出个离开他的下一站的不然是是是那是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
1: Sanjur. Duser Sanjur. Singing them to Gong Kazo, Shang La Duser Sanjur Shijuin. She say Chuni Ni, Chung Hua Muman Shitun Jeki, Shekan Koyu, Chen Shung, Chitun Chenlu, Cheta Tunju Gorji, Yonder, Gotsubashi. Yonder Nan Duno, Chen Shung Dun Tin Zoda, Sinzi Chen Yu Dunir. Kiliji, Nisun Shate Sola, Sentry Dinsi Shiju, Tu Yujin. Yonder Chuyuna, Jun Yunji, Bazo Dang Jua Yubi, Kili Kadang, Koyu Sun Shugan Ju, Kiliji, Ginkwa Zo. Koyu Sun Shugan, Li Guan Giniji, Ginkwa Dang. Tiji, Chigui Koyu Sun Shugan Dua Dang Ba Jin Bashi. Nindu, Nadisa Guji, Gong Pin Sinji,